अजल वही है बारु बादू वे तहु तुनते हैं हबरु दनी हैं मगे मूनु गलकुनु लेवे हैं जहमु वणी हैं।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: موديها كم ميجا هاتز تبقى هي فعلا.
1: तुम फट के इस्तेमाल कर माकी नए वाला निजामा फुप्पा में वैसे कम के साबुन तफात गेलों तली बे कम है फुप्पा में ली बे गेलों तक बलारु फुप्पा में के कैंसर जहों एम्फ्रेटम कम कं ऐगे तुरुं नए वाहिलों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के आबाया कुर्मतियों में के तुरुं न्यूमोनिया टीबी कहल कांतता जहों के हिरास तुम फट के इस्तेमाल कराना में एत्र वेगेंदे तुम्फत के इस्तेमाल कुर्मकी नेवा होली हिमकोल्ला नेवा हिंगुंग मां होरस सड़ा कमे एकम के साबुं नेवा कुरों केसों रोगा गुंदगुता कुर्मति कुरवा कमे तुम्फत के इस्तेमाल कुर्मकी नेवा ला निजाम जी है एके की इन्फेक्शन तक कुर्मतिम के फ्रोसत बड़ कुरा कमे आदि तफात रोगा तक जेहु मफ़ह एरोगा तक रंगलनुवे दिगुलाएगोस एरोगा तक साबुं दिमावा तफात नरकाता कुर्मतिम के हिरास इतरु कुरा कमे

0: तो चाहे नफरत कर।
1: नुआदी है के मेगाहर्ट्स दिवे एफएम अब अदुएस एम मेगातुगा
2: देंग मी फिल्मों मी गेनिस तेलावे की दीवाना दीवाना के माने की मोयवु नुआत लोबी का दीवाना वु एहनो मी लवें हम ए हुसास तवर फुरी हमें बुने दीफवे मी सूफी लवे मी लवें का सूफी के म्यूजिक के हुरी हां सिफत केंगे बहुरी एआर रहमान के एम फाहक कोलेवे ए सिफे की तफात वत्तरु तोगे तफात पावे तोगे म्यूजिक के न गेनिस दीफवाती मी फिल्म का विस तफात म्यूजिक के न हिमनाफवे सूफी क्लासिक जेज आदि फोक म्यूजिक विस मी फिल्म का वणी एन गेनिस दीफा

0: ਰੇਡੀ ਰਹੀ ਐਫ ਐਮ 9.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ।
1: आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया, साला हम एक संडास न बना सके।